0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जापान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में फादर्स डे जून की तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आज सब अबुओं के लिए नेक तमन्नाएं।
1: वाह, मई में मदर डे और जून में फादर्स डे।
0: जी जनाब, जापान में फादर्स डे को कहते हैं चीची नो ही।
1: मदर्स डे पर तो बच्चे इजहार तशक्कुर के लिए माओं को तोहफे देते हैं, कार्ड भेजते हैं। फादर डे पर वालिद साहिबान के लिए भला क्या होता है?
0: मेरा ख्याल है उनकी खिदमात पे सिर्फ खराज तहसीनी पेश कर देना काफ़ी होगा। वैसे हमारे पाको हिंद में तो फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इसलिए मैंने उर्दू सर्विस की जापानी रुकन ह्योरी उराता साहिबा से उस बारे में पूछा तो कहती हैं, बचपन में फादर्स डे के मौके पर स्कूल में वो लोग अपने वालिद की तस्वीर बनाते, कोई मजमून या पैगाम लिख कर बतौर तोहफा देते, और वो कहती हैं कि तब फादर्स डे के आस पास जो इतवार आता था उसको स्कूल में ओपन डे होता ताकि वालिद हजरात क्लास देखने आ सकें। वो कहती हैं अब मुआशरे में ज्यादा समाजी तब्दीलियां आने से शायद हर स्कूल में ये पहले जैसा ना हो, लेकिन उनके लिए फादर्स डे की नुमाया तरीन याद यही है।
2: लेकिन मेरे ख्याल में हर इलाके के स्कूल का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा खलील साहब, सुना है जापान में फादर्स डे का तसव्वुर अमेरिका से आया था?
1: जी सोफिया साहिबा, सुनने में आया है कि अमेरिका से जापान में फादर्स डे का तसव्वुर लाने वाले जो साहब थे वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे।
0: जी, और जापान मेंस फैशन यूनिटी नामी तंजीम के मुताबिक ये साहब 1980 में न्यूयॉर्क में अमेरिका की फादर्स डे काउंसिल के डायरेक्टर से मिलने के बाद जापान आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक निजी तंजीम फादर्स डे काउंसिल जापान कायम करेंगे, और यूं 1982 से जापान में बड़े पैमाने पर फादर्स डे मनाया जाने लगा और फादर्स डे येलो रिबन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया।
1: सोफिया साहिबा, वसीमा साहिबा ने तो हमें तारीख पढ़ाना शुरू कर दी है।
2: अरे भाई, तारीख का लेक्चर रोकें और फादर्स डे पर बात कुछ देर के लिए मुलतवी करके सामईन के पैगामात की तरफ आएं।
0: जी सोफिया, तारीख का सबक लेना जरूरी है। मेरी अम्मी कहती थी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात को याद किया सुबह को सफा।
1: याद करें और फिर भूल जाएं।
0: जी
1: ये तो याद रखिए कि अब सामीन के पैगामात का वक्त है। तो पहला पैगाम है मायरा अख्तर साहिबा का जापान के ओसाका से। मायरा साहिबा लिखती हैं कि मैं 28 मार्च 2026 को ओसाका में होने वाले पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में गई थी, वाकई बहुत अच्छा लगा। जापान की सुमो रेसलिंग और रिवायती सिंधी कुश्ती मुलाखड़ा को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने भी माहौल को काफ़ी पुरजोश और रंगीन बना दिया। बतौर पाकिस्तानी दिल खुश हो गया कि हमारी सकाफत को इतने प्यारे अंदाज में दिखाया गया। बाद में NHK की उर्दू सर्विस पर इसके बारे में सुनकर लगा जैसे वो दिन फिर से याद आ गया हो।
2: मायरा अख्तर साहिबा, पैगाम का और प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। हमें भी पहले तजस्सुस था कि ये मुकाबला कैसा होगा, लेकिन अच्छा रहा और अब आपकी राय सुनकर हमें भी और मज़ा आ रहा है।
0: बहुत मज़ा आया था, खूब रौनक थी। और खलील साहब, इस मुकाबले से पहले सुम्मो पहलवानों ने बड़े तहम्मुल से समझाया और मुलाखड़ा वाले मल पहलवानों ने इतने शौक से सीख कर भरपूर मुकाबला किया, पूरी जान लड़ाई। उनकी दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई काबिले तारीफ रही।
1: अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पैगाम है मुशर्रफ हुसैन शेख साहब का। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, बरसों बीत गए, NHK को हम पाबंदी से सुनना छोड़ चुके थे, लेकिन हमने NHK को याद रखा हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ईमेल भेजी थी लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी दिलचस्पी की कद्र करें। आपसे गुजारिश है कि फ़ोन पर रابطہ कायम करें। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है।
2: जी मुशर्रफ साहब, पैगाम का बेहद शुक्रिया। NHK ने भी आपको याद रखा हुआ है, जैसे ही आपका पैगाम मिला उसको शामिल कर लिया है।
0: मुशर्रफ हुसैन साहब, हम आपकी दिलचस्पी की बहुत कदर करते हैं। उम्मीद है आइंदा मज़ीद तफसीली पैगाम भेजेंगे। हमारी वेबसाइट पर मौजूद दीगर सिलसिलों पर भी नज़र डालिए, अपनी राय रवाना कीजिए, हम मुंतज़िर हैं।
1: اور میں منتظر ہوں کہ اب وسیمہ صاحبہ بتائیں کہ ان کے گھر میں فادر ڈے کیسے منایا جاتا ہے۔
0: ارے میرے بچے اب بڑے ہو گئے، ان کے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے۔ تو جب ابھی ہم نے بتایا جیسے کہ جاپان میں فادرز ڈے جون کی تیسری اتوار ہوتا ہے، تو بچے اسکول میں جو کارڈ بناتے ان کے اسکول میں بھی رواج تھا کارڈ بنانے کا، تو وہ جمعے کو ہی لا کے ابو کو دے دیتے بند لفافہ کہ اس میں آپ کے لیے سرپرائز ہے، اتوار کو ہی کھولیے گا۔
2: پیارے بچوں کی پیاری باتیں، اور اب پروگرام میں شامل کریں گے موسیقی۔
0: آج کا گیت ہے فوبوکا یعنی امی اور ابو کا گیت۔ اسے پیش کرنے والا گروپ ہے گرین۔ فکوشیما پریفیکچر میں تشکیل پانے والا گروپ گرین چار گلوکاروں پر مشتمل ہے، ہیدے، ناوی، کونی اور سو۔
2: یہ سب اراکین لائسنس یافتہ ڈینٹسٹ ہیں، لیکن وہ اپنے کام اور طبی دیکھ بھال کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے اپنے چہرے چھپاتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے گرین کے نام سے ڈیبیو کیا، اس کے بعد انہوں نے کئی ہٹ گانے پروڈیوس کیے
0: جیسے آئی اتا، کسے کی، ہاروکا اور اورنج۔ کسے کی اب بھی جاپان میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والے سنگل کا 2015 کا گینیز ریکارڈ رکھتا ہے۔
1: انہوں نے کئی ایسے گانے پیش کیے جنہیں زندگی کی مسرت کے گیت سمجھا جا سکتا ہے۔
0: ان کی بلاک بسٹر فلم کسے کی آنو ہی نو سوبیتو کی وجہ سے ان کا طرز زندگی بھی گفتگو کا موضوع بنا۔
2: یہ فلم ان کی موسیقی اور کہانی دونوں پر مبنی تھی۔ مارچ 2024 میں انہوں نے گروپ کا نام گرین سے گرین بوائز میں تبدیل کر دیا۔ لگتا ہے کہ ان کی نئی سرگرمیاں مستقبل میں بہت توجہ کا مرکز بنیں گی۔
1: فوبوکا گیت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ بچوں کی پرورش کرنے والے والدین کے شکریہ کا گیت ہے۔ والدین جن کے لیے بچے بہت مشکلات پیدا کرتے ہیں، جیسے رات دیر تک باہر رہنا اور انہیں تنگ کرنا وغیرہ،
2: لیکن گلوکار کے مطابق وہ واقعی شکر گزار ہیں کہ والدین نے انہیں قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھار میں انہیں تنگ کرتا ہوں، انہیں پریشان کرتا رہتا ہوں،
0: لیکن کہتے ہیں میں اپنی زندگی گزاروں گا، آس پاس کے لوگوں کا شکر گزار رہوں گا۔ فوبو کا گیت کے بولوں میں ہے، امی ابو بہت شکریہ، میں ابھی بھی سمجھدار نہیں ہوا، لیکن آپ کی ساری محبت پاس رکھوں گا، زندگی میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔